होती होंगी कुछ मजबूरियां रात से लेकर सुबह तक जागने वालों की भी, होती होंगी कुछ मजबूरियां रात से लेकर सुबह तक जागने वालों की भी, वरना सुकून की नींद और ताजगी भरी सुबह किसे पसंद नहीं। 5:30 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी अर्चित के साथ।

ना समझ ही रहने दीजिए अब हमें, ना समझ ही रहने दीजिए अब हमें, इतना समझदार होकर भी क्या करना है। समझदारी के इस दौर में समझ में ही नहीं आता है जब कुछ, समझदारी के इस दौर में समझ में ही नहीं आता है जब कुछ, इससे तो हम ना समझ ही अच्छे हैं। 5:37 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी अर्चित के साथ।

बनी रहने दीजिए कुछ ख्वाहिशें अधूरी ही सही, बनी रहने दीजिए कुछ ख्वाहिशें अधूरी ही सही, सारी पूरी हों ये ज़रूरी तो नहीं। सुकून ए ज़िंदगी पर ही ध्यान दीजिए सारा, सुकून ए ज़िंदगी पर ही ध्यान दीजिए सारा, क्योंकि ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं।

एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, आसमान से आया फरिश्ता। 5:46 हो चुके हैं, अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम भोर सुहानी। लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम का आखिरी गीत।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं, विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर ने कल अपनी दो दिन की बहरीन यात्रा समाप्त की। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और क्राउन प्रिंस तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। यह बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन 2026 में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेन देन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our home.

A very beautiful morning, dear listeners, and especially monsoon mornings are prettier than ever. बाहर का मौसम तो देखिए जरा लगता है अभी के अभी बारिश हो जाएगी, पर ये बादल भाई साहब भी ना जोर से पिघलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। चाहे हम सब का दिल जितना भी चिल्ला चिल्ला कर क्यों ना कहे, बरसो रे मेघा बरसो रे बाबा। वैसे मॉर्निंग के पीक आवर्स हैं तो हर जगह ट्रैफिक जाम होना तो नेचुरल है। कोई ऑफिस के लिए निकल रहे होंगे तो कोई जिम के लिए। अरे हाँ, मैं भी अपने टू व्हीलर पर अपने स्टूडियो के लिए निकली रही थी और चलते चलते जैसे ही मैं टैंकमेंट पहुंची ना, ओहो, हुसैन सागर की वो ठंडी ठंडी हवा और चेहरे पर टपकने वाली वो हल्की हल्की बूंदे। सच में मौसम अचानक इतना रोमांटिक हो गया कि लगा काश ये ट्रैफिक थोड़ी देर और यूं ही रुक जाए। वैसे दोस्तों, क्या आप में से किसी को इस हुसैन सागर का असली नाम पता है? नहीं पता ना? तो फिर चलिए आज आपको इस टैंक बंड और हुसैन सागर के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने वाली हूँ मैं। यूं ही बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, चाहे तो इतने में अपने लिए एक चटपटी झालमुरी बनवा लीजिए। डबल मज़े के लिए ये रहा एक फास्ट नंबर स्पेशली फॉर यू ओनली ऑन आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9।

0: FM Rainbow 101.9.
1: हेलो दोस्तों, खाली झालमुरी। मेरा भी बड़ा ही मन कर रहा है, काश मैं भी वहाँ होती और अपने लिए एक बढ़िया सी छटपटी झालमुरी बनवा लेती। वैसे टैंग बन की झालमुरी, ठंडी ठंडी आइसक्रीम और उसके बाद वो गर्मा गर्म भुना हुआ भुट्टा, साथ में दोस्तों की गप्पे। हाँ जी, ये तो चाहिए ही चाहिए। और ऑफ कोर्स उसे

राउंड में फिर से एक और आइसक्रीम। वाह, दिस इज व्हाट आई कॉल प्राइसलेस एंटरटेनमेंट, ट्रूली एजलेस, ट्रूली टाइमलेस। जी हाँ दोस्तों, टैंक बंड इज नॉट जस्ट ए लैंडमार्क, इट्स नॉट जस्ट ए रोड, ये एक खूबसूरत कहानी है हमारे हैदराबाद की, हम सब हैदराबादीज की। और आपको पता है, एक जमाना था जब इसी हुसैन सागर ने लाखों लोगों की प्यास बुझाई थी। सच्ची? हाँ जी, ये सुन के तो आप और भी चौंक जाओगे कि हुसैन सागर का असली नाम बंडीवागु है। अरे यार, हैदराबाद में रहते हुए अगर टैंक बंड की ये कहानी ही नहीं पता हो तो मज़ा क्या है, और मन इज्जत इमगा वाला चपंडी। इसलिए तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हजरत हुसैन शाहवली साहब, यही वो जनाब जिनके नाम पर इस खूबसूरत तालाब का नाम रखा गया है। और अब ये क्या हुआ, कैसे हुआ, आई विल टेल यू एवरीथिंग, लेकिन एक प्यारे से नगमे के बाद। सो स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन FM रेनबो 101.9 विथ मी आरजे रानी श्री राम।

वेलकम बैक डियर लिसनर्स। टैंक बंड की कहानी चल रही थी ब्रेक के पहले। यस, हज़रत हुसैन शाह वली जी, ये है उस ज़माने के यानी

ये है उस जमाने के यानी 1562 के एक मशहूर सूफी संत और साथ ही एक सुपर टैलेंटेड इंजीनियर भी। अब शुरू होती है असली कहानी। उस जमाने में गोलकोंडा फोर्ट के आसपास पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई थी कि लोगों के सामने पानी की भारी स्कैर्सिटी आई थी। तब गोलकोंडा के किंग इब्राहिम कुली कुतुब शाह जी ने इस प्रॉब्लम से अपने जनता को यानी हम सबको बचाने के लिए बंडीवागु नाम के एक छोटे से जलधारा के ऊपर एक बांध बनाकर उस रुके हुए पानी से सबकी प्यास बुझाना बुझाने के लिए सोचा था। बाय द वे, ये बंडीवागु और कुछ नहीं है दोस्तों, बल्कि हमारी मूसी रिवर है ना, उसी के ही एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी थी। बस फिर क्या, राजा का हुक्म हुआ, बंडीवागु के ऊपर बांध बनकर तैयार हो गया एक विशाल तालाब। और इस पूरे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली मुमकिन बनाने वाले थे हमारे सुपर इंजीनियर हजरत हुसैन शाहवली साहब। तो राजा ने विद लॉट्स ऑफ रेस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड उन्हीं के सम्मान में इस तालाब का नाम रख दिया है हुसैन सागर। और वही बांध आज बन गया है हमारा प्यारा टैंक बंध। है ना कमल की कहानी, पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तब तक थोड़ा म्यूजिक और मस्ती को भी एंजॉय कर लीजिए। सो हियर वी गो, आ गया है आपके लिए एक मस्त और जबरदस्त गाना ओनली ऑन आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9।

वेलकम बैक मेरे दोस्तों। यू नो व्हाट, ये जो सस्टेनेबिलिटी और नेचर को बचाने की बातें आज हम सब इतनी शिद्दत से करते हैं ना, आवर एंसेस्टर्स वर वे हेड ऑफ देयर टाइम। उन्होंने करीबन 400 साल पहले ही इस कॉन्सेप्ट को जी कर दिखा दिए थे। कैसे, लेट मी टेल यू। हुसैन सागर के गोलकुंडा फोर्ट तक पानी सप्लाई करने के लिए उस ज़माने में इंजीनियर्स ने कमाल के स्टोन कैनाल्स और मड पाइप्स यानी मिट्टी से बने पाइप्स का इस्तेमाल किया करते थे, और एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़रिए फोर्ट के अंदर के वेल्स और छोटे छोटे टैंक्स में पानी पहुंचाते थे। और जैसे ही किले के वेल्स पानी से पूरे भर जाते थे, पानी अपने आप रुक जाता था। यस, एन ऑटोमेटिक कट ऑफ सिस्टम इन द 16th सेंचुरी। कैन यू बिलीव इट। माना कि आज हुसैन सागर डायरेक्टली ड्रिंकिंग वाटर सोर्स नहीं रहा है दोस्तों, बट यू नो व्हाट, ये आज भी हमारे सिटी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में एक नेचुरल हीट सिंक की तरह काम करता है। इतनी ही नहीं, हवा के डस्ट पार्टिकल्स को सोख लेता है और ग्राउंड वाटर लेवल को बनाए रखता है। यानी इतने तरीकों से हमारी केयर करने वाला ये हुसैन सागर हमारे हैदराबाद की धड़कन है। तो बॉस, इस दिल को संभाल कर रखना तो बनता ही है। सच में, वी हैव टू प्रोटेक्ट इट। वो कब और कैसे करें जानेंगे फॉर श्योर इस शानदार संग के बाद। स्टे ट्यून ओनली ऑन FM रेनबो 101.9 विद मी आरजे रानी श्री राम।

Hello, welcome back, dear listeners. This is your companion RJ Rani Sriram joining you on Namaste, Hello, Adab. Dosto, have you noticed वक्त के साथ साथ हमारी ज़िंदगी और आदतें कितनी बदलती जाती हैं? कुछ अपने आप बदलती जाती है तो कुछ आदतों को हम खुद अपना लेते हैं. एक ज़माना था जब बचपन स्लेट और स्लेट पेंसिल से शुरू होता था, फिर नोटबुक और पेंस आए. बट टुडे LKG से लेकर MBBS तक सबका जहाँ सिर्फ एक ही चीज़ पर चल रहा है, अपनी उंगलियाँ नचाने पर, वही कीबोर्ड पर. आई मीन सीरियसली, स्मार्टफोन हो या फिर लैपटॉप हो, आवर कनेक्शन विद दिस कीबोर्ड हैज़ बिकम सो डीप. वी आर जस्ट सो यूज्ड टू दिस, राइट? पर मेरे समझ में ये नहीं आया कि ABCD को इतना बुरा क्यों तोड़ा मरोड़ा है भाई, क्या दुश्मनी थी. ज़रा सोचिए, बचपन में मम्मी पापा ने सिखाया ABCD.

ई एफ जी। लेकिन इस कीबोर्ड के इन्वेंटर ने तो अलग ही लेवल का गोलमाल किया हुआ है। आखिर वाई इज इट क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई एंड नॉट ए बी सी डी, जानेंगे एक स्मॉल ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू एफ एम रेनबो 101.9, रेनबो के साथ लाइफ रंगीन।

0: द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt to rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

Welcome back, dear listeners. You just got me right here on FM Rainbow 101.9. तो ब्रेक पर जाने से पहले आई वॉज आस्किंग ABCD को इतना बुरा क्यों तोड़ा मरोड़ा गया है. वी ऑल नो दैट इट कांट बी अ रैंडम प्रैंक एंड टू अनफोल्ड द सुपर्ब इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लेट्स फ्लैशबैक स्ट्रेट टू द 1870s जो मैकेनिकल टाइपराइटर्स होते थे. शुरुआत में कीबोर्ड्स एक्चुअली ABCD ऑर्डर में ही थे, लेकिन लोग इतनी तेजी से टाइप कर रहे थे कि टाइपराइटर की वो जो लोहे की डंडी होती ना जो पेपर पर थप्पा मारती थी वो आपस में ही टकरा कर जाम होने लगी. That's when our inventor Christopher Sholes used his brain and he said, "Boss, slow down." उन्होंने सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले लेटर्स को एक दूसरे से दूर फेंक दिया ताकि फिंगर्स को थोड़ा टाइम मिले और मशीन जाम ना हो. So the QWERTY layout was designed not to speed you up but actually to slow you down. पर अच्छा, कंप्यूटर में कोई डंडी नहीं है अभी, फिर भी हम इसके आदि हैं. बॉस, इसी को कहते हैं आदत का खेल. वैसे इस आदत से जुड़ा एक बड़ा क्रेजी सवाल मेरे दिमाग में आया है, बताती हूँ एक छोटे से ट्रैक के बाद. लेट्स टेक ए क्विक म्यूजिक ब्रेक. स्टे ट्यून्ड विद मी आरजे रानी श्रीराम ओनली ऑन FM रेनबो 101.9 रेनबो के साथ लाइफ रंगी.

वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आउट ऑफ प्योर क्यूरियासिटी, व्हाट इफ स्कूल्स एक्चुअली रिप्लेस द ABCD ऑर्डर विद QWERTY? जस्ट इमेजिन प्री स्कूल किड्स सिंगिंग QWERTY, नेक्स्ट टाइम वुड यू टाइप विथ मी। ओ माई गॉड, नवा बना टोटल खैस, राइट? एक पल के लिए सोचिए कितना अजीब होगा अगर हम कीपैड लेआउट को फॉलो करेंगे तो, है ना? हमारे सारे डिक्शनरीज और स्कूल रजिस्टर्स सब बदल जाएंगे। पर हाँ, एक फायदा होगा, वो बच्चे पैदाइशी सुपर फास्ट टाइपिस्ट बनेंगे, उन्हें टाइपिंग क्लासेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो व्हाट्स योर टेक? क्या हमें वाकई इस कीबोर्ड के हिसाब से ढलना चाहिए या फिर बरसों से जो ABCD का आर्डर सीखा है उसी को कंटिन्यू करना चाहिए? पिंग मी ऑन योर व्हाट्सएप विंडो राइट नाउ, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। तब तक के लिए सुनिए एक बेहद प्यारा सा गाना ओनली ऑन FM रेनबो 101.9 विथ मी RJ रानी श्री राम।

वेलकम बैक डियर लिसनर्स। दोस्तों आप कुछ भी कह दो यार, ये मैं तो परेशान हो चुकी हूँ ये सुन सुन के। हर किसी को देखो, ओहो सावन, वाह सावन करते ही जा रहे हैं। हाँ माना कि बारिश में भीगना, बाद में गर्मा गर्म पकौड़े खाना मुझे भी अच्छा लगता है, पर उन मदर्स के बारे में तो सोचिए। समर्स में आराम से नींद से उठती थी, एक सुकून वाली चाय की चुस्की लेती थी बेचारी। अब ये मत पूछना कि इनका और मानसून से क्या लेना देना। ऑफ कोर्स लेना देना है ही भाई, स्कूल जो शुरू हो गए ना, और लंच बॉक्स को लेके डेली एक नया टास्क झेलना, लिटरली दिन में भी तारे दिख जाते हैं। हस्बैंड्स तो बेचारे बॉक्स में कुछ भी रख लो चुपचाप खा लेते हैं, पर ये बदमाश नटखट बच्चे ये तो बिल्कुल भी नहीं मानते। उनको रोज़ कुछ अलग चाहिए होती और कुछ नया चाहिए होते है। क्या करेंगी बेचारी माएँ भी। आपके घर में भी ऐसा ही कुछ हाल है ना, पता है मुझे। वेल यू नो व्हाट, महाराष्ट्र के एक स्कूल ने मदर्स की इस परेशानी का एक मिराकल सॉल्यूशन निकाला है, और इस नए थॉट से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों ही सुपर खुश हो गए हैं। हाँ मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे, बट यू आर ब्रेकिंग अप द रॉन्ग ट्री। अगर आपको लगता है कि स्कूल ने खुद लंच अरेंज किया हो, नॉट एट ऑल, थोड़ा डिफरेंट सोचिए। और तब तक सुनते हैं एक ऐसा गाना जो सीधा दिल पे उतरेगा, ओनली ऑन FM रेनबो 101.9, रेनबो के साथ लाइफ रंगी।

सच ए वंडरफुल सॉन्ग राइट। वेलकम बैक डियर लिसनर्स। ब्रेक पर जाने से पहले मैं बात कर रही थी महाराष्ट्र के उस स्कूल की जिसने मम्मीज की सबसे बड़ी टेंशन का एक रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन निकाला है। सॉरी, तो चलिए लेट मी ब्रेक द सस्पेंस। स्कूल ने लागू किया है एक कमाल का सिस्टम, 1 month 1 box rule। इसका मतलब ये है कि अब मम्मीज को रोज़ रोज़ सुबह उठकर डब्बा पैक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि पूरे महीने में आपको सिर्फ एक ही दिन टिफ़िन रेडी करना होगा। बट हियर इज़ द ट्विस्ट, उस दिन आप जो कुछ भी रेडी करेंगी वो अकेले अपने बच्चे के लिए नहीं बल्कि पूरे क्लास के लिए रेडी करेंगी। इमेजिन कीजिए, मंडे को रोल नंबर एक की मम्मी ने सबके लिए पास्ता बनाया तो ट्यूसडे को रोल नंबर टू की मम्मी सबके लिए इडली भेजेंगी। इसका मतलब बाकी के सारे दिन आप बिल्कुल बिंदास रह सकते हैं। नो किचन ड्रामा, नो मॉर्निंग रश, और आप मज़े से अपनी सुबह की कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं और आराम से अपने ऑफिस के लिए निकल भी सकते हैं।

और बच्चों का सोचो, उनका तो रोज़ अलग किस्म का फूड फेस्टिवल चलेगा। डेली सरप्राइज, डेली न्यू टेस्ट, क्या बात है ना। मुझे तो ये आइडिया सुपर हिट लगा, और सच कहूँ तो काश ये सिस्टम दुनिया भर के सभी स्कूल्स में लागू किया जाए। रेस्पेक्टेड स्कूल प्रिंसिपल्स एंड मैडम्स, ज़रा सोचिए ना इसके बारे में जी प्लीज़। अगर आप हाँ बोले तो सारी मम्मीज़ की

हाँ बोले तो सारी मम्मीज की मॉर्निंग्स बनेंगी झिंगला झिंगलाला। सुनते रहिए एफएम रेनबो 101.9 विथ मी रानी श्रीराम।

यस दोस्तों, दैट वाज सच ए वंडरफुल सॉन्ग सोनू निगम की आवाज़ में। और आपको पसंद आया होगा, है ना? या सुनिए और एक वंडरफुल सॉन्ग।

0: लगता है कोई कॉलर हमसे जुड़े हैं। देखते हैं कौन है। हेलो,
1: गुड आफ्टरनून मैडम,
0: वेरी गुड आफ्टरनून अंडी। చెప్పండి, మీరు టాపిక్ విన్నారా?
1: విన్నాను మేడం. నేను నరసింహారెడ్డి మాట్లాడుతున్నా.
0: నమస్తే నరసింహారెడ్డి గారు, ఎలా ఉన్నారు? భోజనం చేశారా? బాగున్నానండి, బాగున్నాను. చెప్పండి.
1: బచ్పన్ మే బోలే తో మేడం ఐసా హే, వో తో బచ్చే కూల్ ఖేల్ కూదనా ఖేల్నా వో మస్తియా కర్తే థే.
0: వో తో సబ్ కర్తే థే, పర్ మే జానా చాహతీ హూ ఆప్ క్యా కర్తే థే.
1: हाँ वही तो बता रहा हूँ मैं आपको. हाँ, बताने
0: जी, जी जी बताइए.
1: तो ऐसा होता था, लेकिन मेरा क्या एक ही किस्सा था. रोज उससे वो घर पे जाके लड़ाई करना, उसको मारना, इसको मारना. रोज को घर पे पंचायदा लाना, यही काम रहता था मेरा.
0: अच्छा, बहुत नटखट बच्चा.
1: रोज ऐसा खेल कूद में जो भी मेरी बात नहीं सुने तो उसको पीटना.
0: अच्छा.
1: पीटने के बाद उसके घर वाले मेरे घर पे आना, उसके बाद में मेरे घर वाले मेरे को पीटना.
0: ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस हो रहा है ना सर.
1: बड़ा होने के बाद भी मेरे साथ सिनेमा को आने के लिए लोग डरते थे. लाइन में नहीं डरता था मैं.
0: अच्छा अच्छा.
1: सामने से जाना, लड़े भगड़े करना, टिकट निकालना.
0: अच्छा अच्छा लगा सर, आपके हरकतें जानकर बहुत ही अच्छा लगा. ऐसे ही यूं ही कॉल करते रहिए. और ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सर.
1: एक गाना सुना सकते मैडम?
0: कौन सा सर बताइए.
1: सावन का महीना पावन का रे सोरे बोल.
0: हाँ, मैं ट्राई करूंगी सर, जरूर ट्राई करूंगी. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग.
1: थैंक यू मैडम,
0: थैंक यू. लगता है और एक कॉलर हमसे जुड़ना चाहते हैं. देखते हैं कौन है वो. हेलो हेलो रेनबो, हेलो हेलो हेलो हेलो रेनबो, हेलो रेनबो, कोई है? कोई हमसे जुड़ना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, शायद लाइन कट हो गई है. ठीक है, कोई बात नहीं. इतने में एक गाना सुनते हैं.

लंदन से पेरिस, पेरिस से रोम, रोम से इजिप्ट, इजिप्ट से इटली, सिसिली, हॉलैंड, पोलैंड, शॉलैंड, गोलैंड, सब जहां की लड़कियां देखी। अरे दिल को कोई नहीं भाई,

0: रेनबो 101.9।
1: हेलो दोस्तों, तो फिर हम बहुत सारे बातें सुने हैं, कॉलर्स की आवाज़ सुनी है। तो फिर दोस्तों, वक्त आ गया है अलविदा कहने का और हमारी नेक्स्ट आरजे भी बिल्कुल भी तैयार है कुछ खास बातें परोसने के लिए, जिसके बारे में सोचकर मेरा तो भूख बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct borewells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

0: FM Rainbow 101.9।
1: ये आकाशवाणी हैदराबाद है। स्टूडियोज की घड़ी में रात के 9:30 और 10 सेकेंड हुआ चाहते हैं। अभी चंद लम्हात में आप सुनेंगे उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

0: लेकिन ऐसा सोचना सरासर गलत है। हर कामयाब इंसान अपने मकसद से गाफिल नहीं होता। फजूल गुफ्तार में वक्त जैसी अहम चीज को बर्बाद नहीं करता। तमाम अहले शोहरत व इज्जत की कामयाबी का राज बस एक ही है और वो है अमल। और उनकी जिंदगी से हम सभी को तहरीक मिलती है, दावत अमल मिलती है। बस इंसान की जिंदगी उसके अपने आमाल व किरदार से बनती है। एक मशहूर शेर है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का।
1: आप समाप्त कर रहे थे हर्फ़े ताबिंदा, तहरीर और पेशकश थी आयशा बुतूल की। वाकई बहुत ही मालूमती बातें हमने समाप्त की। अगर हम इनको अपनी ज़िंदगी में इतलाक़ करेंगे इन बातों का, तो वाकई हमारी ज़िंदगी खूब से खूबतर हो सकती है। तो बहरहाल कोशिशों के साथ साथ अमल भी ज़रूरी है, और अमल पैरा होने के लिए कोशिश भी इंतहाई ज़रूरी है, तभी जाकर हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो कामयाबी के इस सफ़र पर हम और आप निकल पड़े हैं। हम यही उम्मीद रखते हैं कि आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा आपके लिए कामयाब साबित रहे और खुशियों से भरा भरा रहे। बस यही हमारी कोशिश होती है और हम इसी मकसद के तहत आगे बढ़ते रहते हैं। तो चलिए फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं हमारे प्रोग्राम की अगली पेशकश की जानिब। समय मत सहल हमें जानो सिलसिले के तहत अभी आप सुनेंगे तकरीर। आज हम सुनेंगे मशहूर शायर मीर अनीस से मुतालिक कुछ ज़रूरी मालूमात। लीजिए समाप्त कीजिए।
2: मीर अनीस उर्दू के सरबरावरदा मरसिय निगार और खजीना शायरी के नुमाइंदा फनकार हैं। मीर अनीस के जिक्र के बगैर रसाया अदब की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। मीर अनीस ने उर्दू मरसिय को एक नई आबोताब और अजमत और सरबलंदी अता की। उनका ये दावा बेबुनियाद नहीं। सुबुक हो चली थी तराजुए शेर, मगर मैंने पल्ला गिरा कर दिया। मेरी कद्र कराए जमीन सुकन, तुझे बात ने आसमा। मीर अनीस जब लखनऊ पहुंचे हैं तो यहाँ दबीर का तोती बोल रहा था। हर तरफ उनकी शायरी के चर्चे थे। इस माहौल में पहले पहल मीर अनीस की तरफ अवाम ने ज्यादा तवज्जो नहीं की। मीर अनीस बुरी तरह एहसास तन्हाई का शिकार हो जाते हैं और खुदा से दुआ करते हैं, या रब चमने नज्म को गुलजार इरम कर, या रब चमने नज्म को गुलजार इरम कर, तू फैज का मबदा है तवज्जो कोई दम कर, गुमनाम को एजाज बयानों में रकम कर, ऐ अब्र करम खुश्क जिराआत पे करम कर। जब तक के जिया चांद के परतों से न जाए, अकलीम सुखन मेरे कलम रो से न जाए। रफ्ता रफ्ता मीर अनीस के मरसियों ने सामईन के दिलों में अपनी जगह बना ली। उस वक्त मरसिये से दिलचस्पी रखने वाले दो ग्रोहों में तकसीम हो गए थे। अनीस की अदबी मंजिलत से मुतासर अफराद अनीसिये और दबीर के मद्दा दबीरिये कहलाते थे। इनमें अदबी चश्मक भी रहा करती थी, लेकिन खुद अनीस और दबीर ने एक दूसरे की मुखालफत नहीं की। मीर अनीस के मरसिये बयान की सादगी और असलूब की रवानी के लिए शोहरत रखते थे। इसके बरखिलाफ दबीर के कलाम में अक्सर जगह अदक अल्फाज ने जगह पाई थी। मीर अनीस के मरसियों में सादगी के अलावा बेसाख्तगी और रवानी मौजूद है। उनके यहाँ कहीं मुश्किल अल्फाज की वजह से मानी की तफहीम में दुश्वारी नहीं होती। अनीस की मरसियों में मंजर निगारी, जज्बात निगारी और महाकाती कैफियत ने एक खास तासुर पैदा कर दिया है। بعض نقادوں کا خیال یہ

यह कि दबीर के मर्सियों में रजमिया अनासिर कामयाबी के साथ बरोएकार आए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अनीस की मर्सियों में भी जंग का मंजर और रजमिया वारदात की एक अच्छी अक्कासी की गई है। हमला किया ये सुनते हैं जुल्मत ने नूर पर, फेंकी कमंद आंख बचा कर हुजूर पर, आई चमक के तेग जो इस पर गुरूर पर, गोया के बर्क कौन गई कोहितूर पर, खुर्बान दस्ते तेग शहे अर्जुमंद के, कटकर उसी पे जा पड़े हल्के कमंद के, खाती बढ़ा कमान ज्ञानी में रख के तीर, चिल्ले को खींच लाया बना गोश्त तक शरीर, दहनी तरफ उड़ा जो समंदे फलक शरीर, हल्के के बीच में थी जहे तेग बेनजीर, जौहर अजीब कता के उसकी जुबा में थे, चिल्ला न तीर में था न जौहर कमा में थे। मीरनीस को वाकयात की पेशकशी का एक खास सलीका है, वो तौजीही शायरी और बयानिया शायरी दोनों पर दस्तरस रखते हैं। सुबह और शाम का मंजर, दोपहर की गर्मी, सहराए करबला की तपिश और आमदे शब के जो मनाजिर अनीस ने अपने मर्सियों में पेश किए हैं, वो उर्दू की तौजीही शायरी में उनका जवाब मिलना मुश्किल है। सुबह का समय इस तरह बांधा है, तय कर चुका जो मंजिले शब कारवां सुबह, होने लगा उफक से हवेदा निशां सुबह, गर्दों से कूच करने लगे अख्तरान शब, हर सू हुई बुलंद सदाए अजा सुबह, पिन्हा नजर से रुए शबे तार हो गया, पिन्हा नजर से रुए शबे तार हो गया, आलम तमाम मतलए अनवार हो गया, यूं गुलशन फलक से सितारे हुए रवां, चुनली चमन से फूलों का जिस तरह बागबान, आई बहार में गुले महताब पर खजां, कुमला के रह गए समरो शाख कहकशां, दिखलाए तूर बाद सहर ने समूम के, पजमुर्दा हो के रह गए गुंची नजूम के। उर्दू शायरी के तमाम असनाफ का मुताला करें तो इस किस्म के तौजीही बयानात से हमारा साबका नहीं पड़ता। मीर अनीस और दबीर ने इस तरह के महाकात निगारी में कमाल हासिल किया। मीर अनीस के मर्सियों में जज्बात निगारी के मौसर मुरक्के नजर आते हैं। हजरत कासिम मैदान जंग में जाने के लिए तैयार होते हैं और अपनी दुल्हन से इस तरह रुखसत होते हैं। मीर अनीस ने इसका बड़ा दर्दनाक और पुर असर नक्शा पेश किया है। रोते थे धाड़े मार के नामूस शाहिदी, रोते थे धाड़े मार के नामूस शाहिदी, आया दुल्हन से मिलने को शब्बर का नाजनीन, रोती थी सर को जान पे रखकर वो महजबी, सदमे से हिल गया जिगर खासिम हजीन, दिल थाम कर सुवे रुके कुबरा निगाह की, वो दर्द उठा के बैठ के मसनत पे आह की। मीर अनीस को लखनऊ की जुबान पर दस्तरस हासिल थी और वो सनाए बदाए के इस्तेमाल में कमाल हासिल रखते थे। उन्होंने अपने मर्सियों में सिफत तजाद, मरातुल नजीर और सियाकुल आदाद वगैरह का बड़ी बेतकल्लुफी के साथ इस्तेमाल किया है। मसलन, खुश्क तर पर है करम कल्क में एकसां तेरा, हो गया फातिमा के बाग में आते ही निहाल, था वो हंगामा सवारों पर फरस लौटते थे, नौ पे दो आठ पर छह सात पर दस लौटते थे। मीर अनीस हैदराबाद तशरीफ लाए थे, वो नवाब इनायत जंग मरहूम के वालिद नवाब तहवर जंग की दावत पर हैदराबाद आए थे और यहाँ अपने मर्सिये सुनाए थे। मीर अनीस जब मिंबर पर मर्सिया सुनाते तो चश्मो अबरू की जुम्बिश
हाथ के इशारों

और आवाज के उतार चढ़ाव से समा बांध देते थे और ऐसा मालूम होता था कि सारा वाकया हमारी नजरों के सामने मुतहरिक हो गया है। इसको तहतुल लफ्ज कहा जाता था। तहतुल लफ्ज एक बाकायदा फन बन गया था। अब तहतुल लफ्ज की जगह लहन ने ले ली है। मीर अनीस के मर्सियों में मुकालमाती रंग ने उनके बयानात को ज्यादा मौसर बना दिया है। दो अशखास की गुफ्तगु इस तरह पेश करते हैं गोया वो हमारे सामने महवे गुफ्तगु हो। हुर पुकारा के जुबां बंद कर ओ ना हिंजार, हुर पुकारा के जुबां बंद कर ओ ना हिंजार, काबिले लान है तू और वो तेरा सरदार, इब्ने जहरा है जिगरबंद रसूले मुख्तार, क्या मेरा मुंह जो करूं मदा इमामे अबरार, एक जमाना सिफते आले अबा करता है, आप कुरआन में खुदा उनकी सना करता है। हुर का ये जवाब इस बयान से मुताल्लिक था। मैं जहां दीदा हूँ सब मुझको खबर है तेरी, मैं जहां दीदा हूँ सब मुझको खबर है तेरी, कुरअतुल ऐन मोहम्मद पर नजर है तेरी, होंठ भी खुश्क हैं और चश्म भी तर है तेरी, जिस्म खाकी है उधर रूह उधर है तेरी, राह में जो के सुलूक और नवाजिश की है, तूने फरजंदे इलाही से साजिश की है। मीर अनीस के मर्सियों की एक खसूसियत ये है कि वो मुतहरिक अशिया की बड़ी खुश असलूबी से तस्वीर कशी करने में, मसलन दो दिन से बेजुबां पे जो था आबो दाना बंद, दरिया को हिन हिना के लगा देखने समंद, हर बार कांपता था सिमटा था बंद बंद, चुमकारते थे हजरते अब्बा से अर्जमंद, दो दिन से बेजुबां पे जो था आबो दाना बंद, दरिया को हिनहिना के लगा देखने समंद, हर बार कांपता था सिमटा था बंद बंद, चुमकारते थे हजरते अब्बा से अर्जमंद, तड़पाता था जिगर को जो शोर आबशार का, गर्दन फिरा के देखता था मुंह सवार का। अनीस के मर्सिये सिर्फ मजहबी और अदबी एतबार ही से अहम नहीं बल्कि इनमें अखलाकी नुक्ते नजर से भी जिंदगी की आला अकदार और बुलंद महासिन का दर्ज मिलता है। अनीस का शाहकार मर्सिया वो तस्वुर किया जाता है जिसमें उन्होंने बताया कि हुसैन ने अपने अहले खानदान की प्यास का ख्याल किए बगैर हुर के प्यासे लश्कर को अपना तमाम पानी पिला दिया, यहाँ तक कि जानवर भी सैराब हुए। मीर अनीस के बाज शेर ऐसी सदाकत पसंदी के हामिल हैं कि वो जरबुल मिसल बन गए हैं। मसलन, असल जिस तेग की अच्छी हो वही कस्ती है, आलम है मुकद्दर कोई दिल साफ नहीं है, इस दौर में सब कुछ पर इंसाफ नहीं है। अगर लखनऊ में दबीर और अनीस की अखलाकी शायरी ना होती तो वह सोख्त और रेखती उर्दू शायरी पर छा जाते। गजल में रंगीन जुरात और इंशा ने बेबाकी और शूखी से काम लेकर उर्दू शायरी में उरियानी के अनासिर को नुमाया किया था। इसके बरखिलाफ दबीर और अनीस की शायरी में रूह की परवाजों का जिक्र था और अखलाकी और रूहानी कदरें थी जिससे उर्दू शायरी में एक तरह की शायस्तगी और सुतरापन पैदा हुआ। अनीस ने मिरासी की 5 जिल्दें अपनी यादगार छोड़ी हैं।

हमारे शायर थे मीर अनीस, और हमने समाप्त किया इस नामवर शायर के मरसिया गोई के फ़न के मुतालिक। तो तहरीर और पेशकश थी अफशां जबीन साहबा की। तो चलिए सामाई, शायरी का एक रंग जो कि हमने अभी सुना वो था बहुत ही खामोश और एकदम सादगी भरा तौर शायरी का, जिसे हम मरसिया कहते हैं। तो मरसिया के मुतालिक आपने मालूमात हासिल की, और मरसिया किस तरह का हुआ करता है ये भी आपने सुना। मीर अनीस और दबीर के मरसिये बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ करते थे, जो कि जो नज़्म मरने वालों की याद में लिखी जाती है वो मरसिया कहलाती है। बहरहाल आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शेर शायरी भी हमने सुन ली है, और बहुत ही मालूमाती बातें भी हमने समाप्त की हमारे आज के इस बज़्म में। तो आइए अब बज़्म का रुख या माहौल बदलने की कोशिश करते हैं। बदले में हम आपको एक ऐसा रंग देना चाहते हैं जो कि सभी रंगों से निराला है, और जब ये रंग नैरंग प्रोग्राम के रंगों में मिल जाता है तब नैरंग प्रोग्राम की बात ही कुछ और हो जाती है। तो चलिए, आप तो बिल्कुल हैं तैयार और मैं भी हूँ बिल्कुल तैयार हमारी अगली पेशकश के साथ, जिसका नाम है गीत सुरीले गाता जा। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम की एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। आप लोग सभी मेरे साथ यूं ही बने रहिए, यूं ही सुनते रहिए, हम एक से बढ़कर एक नगमे आपकी समातों की नज़र करते रहेंगे और साथ में करेंगे कुछ प्यार भरी बातें। तो चलिए जिंदगी के इस कारवां को इस नीले गगन के तले आगे लिए बढ़ते हैं। सुनिए ये खूबसूरत गीत महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में।

नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, क्या कहने हैं। जी हाँ, फितरत की जितनी भी खूबसूरती है, यानी कि नेचर्स नेचर की जितनी भी ब्यूटी है, उस तमाम खूबसूरती में एक राज छुपा हुआ है, और वो राज है, आप जानते हैं, जानते तो होंगे ही, क्योंकि वो राज सबसे अनोखा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया। अब मुझे बताना ही पड़ेगा कि आखिर वो राज है क्या। वो राज है मोहब्बत, प्यार। जी हाँ, बिल्कुल, फितरत के इन हसीन नज़ारों में एक राज छुपा हुआ है, जिसकी वजह से ये इस कदर हसीन नज़र आते हैं, और वो राज है मोहब्बत। बिल्कुल, हमारे दिल पर जब खुशी छाई हुई होती है, या किसी का प्यार हमारे साथ होता है, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा प्यार की रंगीनी में रंगा हुआ है। धरती से आसमान का प्यार, चांद से चांदनी की मोहब्बत, हवाओं से बादलों की रंजिश मोहब्बतें, और न जाने क्या क्या। मेरे पास अल्फाज बहुत ही कम हैं, लेकिन कायनात में मोहब्बत के ऐसे राज छुपे हुए हैं जिनको हम बयान नहीं कर सकते। लेकिन जब आपके और हमारे दरमियान एक ऐसा बहुत ही ख़ास मौका मिला है, जहाँ पर हम गीतों के ज़रिए कायनात की खूबसूरती को जाहिर करने कर सकते हैं, तो ये मौका मैं बिल्कुल गनीमत जानूंगी। और आज के इस प्रोग्राम में मैं नेचर्स ब्यूटी जो है, कायनात की जो खूबसूरती है, फितरत की जो खूबसूरती है, जो हसीन नज़ारे हैं, उनका जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी। और किस तरह से हिंदी फिल्मों में और गीतों में ख़ास तौर पर इसको पिक्चराइज किया गया और उसका तذکرہ किया गया है, ये मैं सुनना चाहूँगी। और जब हम इस तरह के कोई मंजरकशी को गीत की शक्ल में सुनते हैं, या सुर ताल के साथ, नगमगी के साथ सुनते हैं, तो वक्त का मज़ा कुछ और ही होता है। तो शाम की ठंडी ठंडी हवाओं के साथ प्यारे प्यारे गीतों का मज़ा हमारे साथ ज़रूर लीजिए, और ये हिस्स ऐसा है जो आपकी दिलचस्पी को दोबाला कर देगा। तो आइए, फितरत के हसीन मनाजिर का जिक्र करते हुए एक और हसीन और खूबसूरत नगमा आप सभी की नज़र करते हैं। लीजिए, सुनिए।

हाँ, जब नीले अंबर पर चांद निकल आता है और प्यार बरसाने लगता है, ऐसा लगता है कि आसमान से बरसता हुआ सारा प्यार, सारी मोहब्बत, सारी कशिश सिर्फ आप ही के लिए हैं। और इसी तरह के एहसास कुछ इस तरह के अल्फाज लबों से निकलने पर मजबूर कर देते हैं। जी हाँ, जिसको अभी आपने इस खूबसूरत गीत में सुना, आवाज़ थी साधना सरगम की। इस खूबसूरत सी आवाज़ के सुनने के बाद दिल तो चाहता है कि खूबसूरत नगमों का, खूबसूरत आवाज़ों का ये सिलसिला, ये झड़ी, ये रिमझिम बूंदें यूं ही हम पर पड़ती रहें। और ये वक्त वाकई में हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही ख़ास, बहुत ही अनोखा पल बन जाए। क्यों, आपकी भी क्या इसी तरह की कोई ख्वाहिश है? तो बिल्कुल, अपनी ख्वाहिशों को अमली जामा पहनाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए, खुसूसन रेनबो के इन प्यारे से रंगों में और आपके पसंदीदा प्रोग्राम में जिसका नाम है नए रंग। और नए रंग की एक ख़ास पेशकश जिसका नाम है गीत सुरीले गाता जामे। तो आपको एक बार फिर से बताना है यही कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हम गीतों के सुरीले सफ़र पर निकल पड़े हैं। तो लीजिए एक और सुरीला गीत आप सभी के लिए, लीजिए सुनिए।

जी दोस्तों, ब्रेक के बाद हम एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं गीतों की सौगात लिए, गीतों का प्यारा सा प्रोग्राम सजाए जिसका नाम है गीत सुरीले गाता जा। गीत हम सुनाते चलेंगे और आप भी गीत गाते हुए गुनगुनाते हुए हमारे साथ इस सफ़र को पार ज़रूर करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको इस बात का भी अंदाज़ा देना चाहती हूँ कि इस सफ़र पर निकलते हुए यानी कि इस बज़्म में हम सजते हुए कितना टाइम हो गया है। वैसे तकरीबन आधा घंटा ख़त्म हो चुका है नैरंग की शुरुआत हुए और हम इस सफ़र पर निकल पड़े हैं। फ़िलहाल वक्त हुआ है 10:10 और पूरे 28

सेकेंड्स और भी कुछ रंगीन वक्त आपके और हमारे दरमियान है, तो इस रंगीन वक्त को और भी रंगीन बनाते हैं फितरत के खूबसूरत मनाजिर से, कुछ खूबसूरत रंगों को चुनकर। जी हाँ दोस्तों, फितरत में जिस तरह की खूबसूरती है और इन खूबसूरती के जितने भी रंग हैं, उन तमाम रंगों का जिक्र हम आपके साथ कर रहे हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए। आज एक बहुत ही मज़ेदार रंग से मैं आपको बताने जा रही हूँ के बारे में बताने जा रही हूँ कि ये ऐसा रंग है जो कि बहुत ही प्यारा है, और जब आप इस रंग भरे एहसास से लुत्फ़ानंदोज़ होंगे तो वाकई हमारे इस प्रोग्राम की शान बढ़ जाएगी और आप की दिलचस्पी दोबाला हो जाएगी। तो चलिए इस प्यारे से गीत की जान उस प्यारे से गीत की जानिब हम अपना रुख करते हैं, जिसका होना हमारे इस शो में शायद इंतहाई ज़रूरी है, और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह की खूबसूरत मौसीकी और ख़ूबसूरत आवाज़ों का एक रंग हमारे भी इस शो में रहे, और ये रंग अब मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ चांदनी फिल्म के इस गीत के साथ। तो दोस्तों, श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी की खूबसूरत और अनोखी आवाज़ों में ये गीत हम सुनते हैं, लीजिए सुनिए।

दोस्तों, तो फिल्म चांदनी का ये गीत आपने सुना, बहुत ही प्यारी मनभरी आवाज़ें श्रीदेवी जी की और ज्वाला मुखर्जी की जी की, और ये आवाज़ें हमें नगमगी का यानी कि आवाज़ का एक ऐसा अनोखा अंदाज़ का एहसास दिलाते हैं जो कि शायद इसमें से एक आवाज़ हम आज नहीं सुन सकते। जी हाँ, एक अजीब सी चुलबुलाहट थी श्रीदेवी जी की आवाज़ में। जब जब हम इनकी इनके इनका ये गीत खुसूसी सुनते हैं तो इनकी नटखट सी चुलबुली सी आवाज़ हमारे कानों में रस घोलती है, और इनकी खूबसूरती, इनकी एक्टिंग, इनकी हर चीज़ आँखों के सामने आया हो जाती है, और बस और बस ये इनकी खूबसूरती का, इनके वजूद का हर हिस्सा जिसकी मैं तारीफ़ करते करते नहीं रुकूंगी, और शायद हर कोई एक्टिंग का, इनके एक्टिंग से लेके इनके डांसिंग के एवरीथिंग, हर चीज़ की तारीफ़ करता है। तो चलिए हम तारीफ़ इनकी करते हैं, और आज ये गीत सुनकर एक बहुत बड़ी याद ताज़ा हो गई है। बहरहाल, यादों के गीतों के सुरीले आवाज़ों के इस सफ़र को यूं ही जारी और सारी रखते हैं। एक और बहुत ही पुरसुकून और बहुत ही खास गीत आप सभी के लिए, आप सभी की नज़र करना चाहती हूँ। एक अजीब सा सुकून है इस गीत में, और कुदरत की खूबसूरती का एक अनोखा अंदाज़, और एक नया अंदाज़ हमको इस गीत के ज़रिए सुनने को मिलेगा। उम्मीद करूँगी कि ये गीत भी आपको पसंद ज़रूर आएगा। सो मेरे साथ यूं ही बने रहें अपने पसंदीदा प्रोग्राम में जिसका नाम है गीत सुरीले गाता जा।

दोस्तों, फिल्म सिलसिला का ये पुरसुकून गीत अभी आपने सुना, और इसमें आवाज़ ये जो थी मैजिकल आवाज़, ये आवाज़ थी खुद अमिताभ बच्चन जी की। जी हाँ, ये गीत फिल्माया गया था रेखा जी और अमिताभ बच्चन जी पर। और जिस तरह से एक अनोखापन था आपकी इस आवाज़ में, जिस तरह से आपकी शख्सियत में जैसा अनोखापन है अमिताभ जी की, वैसे इनकी आवाज़ का भी एक अनोखापन है जिसे आप और हम सभी वाकिफ़ हैं, और जिसकी एक खूबसूरत झलक अभी आपने सुनी है। तो आइए आगे पढ़ते हैं, प्रोग्राम को और रंगीन बनाते हैं कुछ और रंगीन गीतों के साथ। तो चलिए, जहाँ पर हमने सूरज, चांद, सितारे, आसमान और भी बहुत सारी फितरती फितरती मनाजिर की खूबसूरती का जिक्र किया है, वहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे नज़ारे हैं जिनका तذकरा बाकी है। तो आइए इस तذकरे को जारी रखते हुए ये गीत आप सभी को सुनाते हैं, सुनिए।

दोस्तों, फिल्म महबूबा से लिया गया ये गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार जी की। इन खूबसूरत आवाज़ों का तذکرہ तो हमारे इस प्रोग्राम में होना ही था। और जब तक ये जुएट सॉन्ग हम इनकी आवाज़ों में कोई नहीं सुनते, तब तक ऐसा लगता है कि नगमगी अधूरी है, मौसीकी अधूरी है, और न जाने क्यों गीतों की हर बात अधूरी है। बहरहाल चलिए, इस संगम, इस चीज़ का, इन बातों का तो संगम हो गया है। और कुदरत के हसीन मनाजिर में और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ताल्लुक से मैंने अभी कहा कि उन सभी का तो हम तذکرہ हमारे इस प्रोग्राम में नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि कुछ कुछ खूबसूरत नज़ारों का जिक्र आपके रूबरू इस प्रोग्राम के ज़रिए हम रखें। तो आइए प्रोग्राम के अगले गीत की जानिब जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये नगमा भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। स्टे ट्यून, मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिए आपके और मेरे पसंदीदा प्रोग्राम में, जिसका नाम है गीत सुरीले गाता जा।

बातें कर रहे हैं कुदरती मनाजिर पर, नेचर्स ब्यूटी पर, और के फिल्मी गीतों में, हिंदी फिल्मी गीतों में खास तौर पर किस तरह से, किस अंदाज में नेचर की खूबसूरती को बयान किया गया है, ये कुछ ज़रूरी इससे जुड़े हुए गीत हम आपको सुना रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और देर तक ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तो फिलहाल एक और सावन के खूबसूरत मौसम में जिस चीज़ का रंग छाता है उससे मुतालिक ये गीत है, बहुत ही मशहूर गीत, मोहम्मद अजीज जी की आवाज़ में। लीजिए आप सभी के लिए, सुनिए।

0: FM Rainbow 101.9.
1: दोस्तों प्रोग्राम नर में आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा, और आज हम गीत भी आपको सुना रहे हैं और साथ में

रातें, मौसम, नदी का किनारा, कितने खूबसूरत अल्फाज, कितना प्यारा गीत। भाई मज़ा आ गया। हाँ, जब हम फितरत के इन खूबसूरत मनाजिर के बारे में सुनते हैं, इनका जिक्र करते हैं, इनसे महसूस होने की कोशिश करते हैं, तो वाकई बहुत ही खुशी और सुरूर हम पे छाने लगता है। तकरीबन सभी तो नहीं कहूँगी कि तकरीबन मनाजिर का हमने जिक्र किया गीतों के ज़रिए। एक और मज़ेदार गीत मैं आप सभी के साथ आगे रखना चाहूँगी, तो चलिए, हो सकता है कि हमारे प्रोग्राम का आखिरी गीत भी हो, तो इस गीत को सुनते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये गीत आपको ज़रूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहिए, प्रोग्राम गीत सुनीले गाते जामे।

दोस्तों, इसी खूबसूरत गीत पर हमारा आज का ये प्रोग्राम अब ख़त्म हुआ जाता है। अगली बार इसी प्रोग्राम में कुछ और गीत सजाए, कुछ प्यारी प्यारी बातों के साथ आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। दोस्तों, सुरीले गीतों का वक्त तो हुआ ख़त्म, लेकिन नैरंग के बज़्म की आखिरी पेशकश अभी बाकी है। तो चलिए समाप्त करते हैं आज के शब की आखिरी पेशकश, जिसका नाम है प्याम-ए-शब। पेशकश है जनाब जैदी की।

0: और क्या था बेचने के लिए, अपनी आंखों के ख्वाब बेचे हैं। ये शेर जिंदगी की तल्ख हकीकतों, कुर्बानियों और मजबूरियों की अक्कासी करता है। जब पास बेचने के लिए कुछ न हो, तो अपने ख्वाब, अपनी ख्वाहिश और अपनी आरजुएं ही कुर्बान कर दें। ये उन लोगों की दास्तान है जो हालात के हाथों अपने दिल के अरमानों को तर्क करने पर मजबूर हो जाते हैं। आज का पैगाम ये है कि जिंदगी में बाज़ औक़ात इंसान को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन अपने ख्वाबों की कदर करना भी ज़रूरी है। वक्ती फ़ायदे या दबाव के तहत अपने तमाम मकासिद और उम्मीदों को कुर्बान कर देना दानिशमंदी नहीं, ख्वाब ही इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। अपने
1: दोस्तों, इसी खूबसूरत पैगाम के साथ हमारी आज की ये नशिस्त इख्तिताम को पहुंचती है। नए रंग की अगली बज़ में आपसे दोबारा मुलाकात ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है। रात के 11 बजने ही वाले हैं। अभी कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबावो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबावो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सभा अल खालिद अल सभा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में आज 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उन्होंने सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच बेहतर सहयोग पर बल दिया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्त्युक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक ने जैस्मिन पाउलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कितनी खूबसूरत सी लाइनें हैं ना, जिंदगी चांद से बेहतर नजर आती है। जी हाँ, जब इंसान इश्क मोहब्बत में होता है तो जिंदगी तो उसे चांद के बराबर ही लगती है। जमीन पर होता है महबूब के साथ तो लगता है चांद की सैर कर रहा है, और ये एक्सपीरियंस बहुत ही खास होता है। फिलहाल आपको याद दिला दूं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो पर, आपकी दोस्त गीतांजलि के साथ। और गजलों का ये कारवां रुकना नहीं चाहिए। गजलें हमारी जिंदगी में तन्हाई के वक्त में हमें बहुत कुछ दे जाती हैं। जिंदगी का सुकून सिमटा है इन गजलों में। सुनिए अगली गजल।

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। FM रेनबो पर रात 9 बजे।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, अब एक नए समय पर, हर गुरुवार शाम 4 से 5 FM रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बब्बर। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

कौन है जो एक साये की तरह मेरे दिल को छूता हुआ गुजर जाता है, कभी पास से कभी दूर से, एक आवाज एक नगमा एक गीत बनकर रक रक में उतर जाता है, कभी पास से कभी दूर से। कौन है जो मुझे अपनी तन्हाई का एहसास दिला जाता है, एक खालीपन सूनापन छोड़ जाता है। मैं उसे देखना चाहती हूं, जानना चाहती हूं, उंगलियों से उसके चेहरे को छूना चाहती हूं। कौन है जो पास रहकर भी मुझसे दूर है, कदमों की आहट सुनती हूं, पलटती हूं, उसे देखती हूं, तस्वीर बन जाती हूं, खुद को भूल जाती हूं, बेखुद हो जाती हूं।

0: ले लो चूड़ियां, रंग बिरंगी चूड़ियां।
1: जी हाँ, गजलों का ये सफर चलता रहा, हम भी इसके साथ साथ चलते रहे। गजलों की दुनिया बहुत ही अलग होती है ना, कव्वालियों की दुनिया, गजलों की दुनिया आपको जाने कहां से कहां ले जाती है। फिलहाल प्रोग्राम में वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, लेकिन जाते जाते बाजार फिल्म की एक बहुत ही खूबसूरत सी गजल मैं आपके लिए प्ले करके जा रही हूं। इसे सुनते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा और FM रेनबो आकाशवाणी के सभी प्रोग्राम्स को आप यूं ही प्यार स्नेह से सुनते रहिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, शुभ रात्रि।
0: अब धानी चुड़िया कहां से लाऊं मैं, यही चित्ती।

आकाशवाणी रेनबो पर अब प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। नई दिल्ली में भारत और म्यांमार के बीच दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय बैठक संपन्न हुई। संगठित अपराधों से मिलकर निपटने पर चर्चा भी हुई। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की। भारत ने पश्चिम एशिया के बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मध्य प्रदेश के श्योपुर में गगनयान मिशन के लिए एकीकृत मुख्य पैराशूट एयरड्रॉप परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। सरकार ने तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफगानिस्तान के कृषि सिंचाई और पशुपालन मंत्री मौलवी अताउल्ला उमारी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान जताया कि भारत इस वर्ष 7% की वृद्धि दर के साथ विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रिजर्व बैंक के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा सोने के आभूषणों के बदले दिए गए ऋण में इस वर्ष मई में

लगभग 70% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। भारतीय खेल प्राधिकरण और सफदरजंग स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर ने खेल विज्ञान, खेल चिकित्सा, खिलाड़ियों के पुनर्वास और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आकाशवाणी रेनबो पर आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम जीरो आर शो। आपके साथ मैं आपकी दोस्त अर्चना।

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 58 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, मैं हूं राखी आपके साथ।

जमीन आसमान फिल्म से आपने गाना सुना। लता मंगेशकर की आवाज में अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। इस मौसम में मौसम के सिवा और क्या बात हो सकती है। और सच भी तो है, जब बादल आसमान पर अपनी चादर बिछा दे, ठंडी हवाएं खिड़कियों को सहला जाएं और बारिश की बूंदें अपनी मधुर ताल छेड़ दें, तब हर बातचीत का विषय भी यही मौसम बन जाता है। खिड़की के पास बैठकर दूर तक फैली हरियाली को निहारना और साथ में पुराने सुरीले गीत, बस यही तो है सुकून का दूसरा नाम।

लवर्स फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। मौसम की अपनी एक अलग ही जुबान होती है। कभी ये रिमझिम फुहारों में मुस्कुराता है, कभी ठंडी हवाओं में कोई भूली बिसरी याद जगा देता है, तो कभी बादलों की गड़गड़ाहट के बीच दिल की खामोशी में सुनाई देने लगती है।

तेरी कसम फिल्म का गाना आपने सुना अमित कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

वक्त हुआ है 12:31 और ठीक 58 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से आपने गाना सुना अनवर और सुलक्षणा पंडित की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। ऐसे लवली लवली मौसम में दिल भी कुछ हल्का हल्का हो जाता है, होंठ अनायास गुनगुनाने लगते हैं, चाय की हर चुस्की सुकून का एहसास देती है और पुराने सदाबहार गीत यादों की खिड़कियां खोल देते हैं। हर धुन जैसे बारिश की बूंद बनकर मन की धरती को भिगो जाती है।

बाबू फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। कुछ मौसम सिर्फ बदलते नहीं, एहसास भी बदल देते हैं। हवा का हर झोंका जैसे कोई प्यारा सा पैगाम लेकर आता है। बादलों की हर आहट दिल की धड़कनों में एक नई लय जगा देती है और रिमझिम बरसती बूंदें मानो जिंदगी की भागदौड़ को कुछ पल के लिए थाम लेना चाहती हैं।

सत्ते पे सत्ता फिल्म का गाना आपने सुना। आशा भोसले और दिलराज कौर की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। कुछ मौसम मंजिल से ज्यादा सफर को खूबसूरत बना देते हैं। ठंडी हवाएं चेहरे को छूकर गुजरती हैं, बादल आसमान पर अपनी कहानी लिखते हैं और हर मोड़ पर लगता है जैसे कोई नया नजारा हमारा इंतजार कर रहा हो। ऐसे मौसम में कदम अपने आप धीमे हो जाते हैं, रास्ते अनजाने जरूर होते हैं लेकिन डर बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि हर मोड़ एक नई मुस्कान, एक नया एहसास और एक नई याद अपने साथ लेकर आता है।

बरसात की एक रात फिल्म का गाना आपने सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। वक्त हुआ है 12:55 और ठीक 56 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। इस दौरान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में मेलबर्न में आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी

0: को नई गति देगी। उन्होंने कहा कि वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। श्री मोदी ने यह भी कहा कि यात्रा के दौरान उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, साथ ही वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। भारत और रूस ने संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और संघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद को भी की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। नई दिल्ली में कृषि नेतृत्व सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, पीएम किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि ऋण और उर्वरक सब्सिडी जैसी योजनाओं से किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफगानिस्तान के कृषि, सिंचाई और पशुपालन मंत्री मौलवी अताउल्लाह ओमारी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने कृषि, सिंचाई, पशुपालन, कृषि अनुसंधान, शिक्षा, क्षमता निर्माण और कृषि व्यापार में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने तंबाकू कंपनियों को किसानों के हितों की रक्षा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तुरंत खरीद शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अमरावती में समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि तंबाकू का मूल्य 200 रुपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ ही कंपनियों को अपने खरीद संबंधी वादे पूरे करने के निर्देश दिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों की सूची से हटाने के फैसले की जानकारी अमेरिकी कांग्रेस को दी है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ये अमेरिका और सीरिया के रिश्तों में एक नया और महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सीरिया की नई सरकार के प्रयासों की भी सराहना की। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजों की चैंपियनशिप में भारत की अंडर 23 महिला मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 पदक पक्के कर लिए हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में भारत की 9 मुक्केबाज सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi arrived in Melbourne, Australia yesterday on the second leg of his three-nation visit. He was warmly received by Australian Minister for Housing, Minister for Homelessness and Minister for Cities, Claire O'Neill, upon his arrival. The Prime Minister said this visit will add vigour to the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. In a social media post, Mr. Modi said that he looked forward to the talks with his Australia counterpart, Anthony Albanese. The Prime Minister said that he will also have the opportunity to interact with the Indian diaspora, which is an important pillar of India-Australia partnership. During his visit, Mr. Modi will participate in the third India-Australia Annual Summit. He will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both the countries. India and Russia yesterday reaffirmed their commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora, including at the UN, BRICS, EAG and SCO. The Ministry of External Affairs said that the 14th meeting of their India-Russia Joint Working Group on Counter-Terrorism was held in New Delhi. Secretary West, Ministry of External Affairs, C.B. George, and Deputy Foreign Minister

वक्त हुआ है 1:10 और 59 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम है गीत सुहानी, मैं हूं राखी आपके साथ।

बरसात फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। बरसात एक ऐसा मौसम जिसने बॉलीवुड के गीतकारों और संगीतकारों को हमेशा से प्रेरित किया है। इस भीगी रुत पर हिंदी सिनेमा में अनगिनत गीत रचे गए। कभी रिमझिम पुहारों में प्यार की खुशबू घुली, तो कभी बरसती बूंदों ने बिछड़ने का दर्द बयान किया। कहीं सावन ने दिलों को मिलाया, तो कहीं बारिश ने यादों को और भी गहरा कर दिया। सच्ची तो है, बॉलीवुड में बरसात पर लिखे गए गीतों की दुनिया जितनी विशाल है, उतनी ही दिलकश भी।

चलती का नाम गाड़ी फिल्म से आपने गाना सुना किशोर कुमार की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। बरसात, ये सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि एहसासों का सबसे खूबसूरत नाम है। जब आसमान से गिरती बूंदें धरती को छूती हैं तो जैसे हर ओर एक नई धुन, एक नई खुशबू और एक नया जादू बिखर जाता है। शायद यही वजह है कि बॉलीवुड ने भी इस मौसम को हमेशा खुले दिल से अपनाया है। वैसे यही कारण है कि जब भी बारिश की पहली बूंद गिरती है तभी अचानक से कोई ना कोई फिल्मी नगमा होठों पर आ जाता है। कभी मन झूम उठता है, कभी दिल यादों की गलियों में निकल पड़ता है, तो कभी कोई मधुर धुन इस मौसम को और भी हसीन बना देती है।

काला बाजार फिल्म का गाना आपने सुना, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। रिमझिम के तराने लेकर आई बरसात और साथ लाई भीगी भीगी यादें, महकती हवाएं और दिल को छू लेने वाले एहसास। बारिश का मौसम जब भी दस्तक देता है तो प्रकृति का हर रंग जैसे और भी निखर उठता है। ऐसे ही मनभावन मौसम को सुरों में पिरोता ये खूबसूरत नगमा जो अभी आपने सुना, वाकई रिमझिम के तराने लेकर आई बरसात।

परख फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने। बारिश की भीनी भीनी खुशबू, पत्तों पर ठहरी ओस, मिट्टी की सौंधी महक और मन को छू लेने वाली ठंडी हवाएं, जैसे प्रकृति ने चारों ओर संगीत बिखेर दिया हो, ऐसे ही सुरमय और मनमोहक मौसम का एहसास कराता है ये प्यारा गीत जो अभी आपने सुना। इसकी धुन और बोल बरसात की हर बूंद को एक मधुर एहसास में बदल देते हैं।

श्री 420 फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

वक्त हुआ है 1:33 और ठीक 4 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

उसने कहा था फिल्म से आपने ये गाना सुना, तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने। बारिश बारिश और ये प्यारे प्यारे तराने कानों में रस खोलते, दिल में उमंग जगाते, ये प्यारे प्यारे तराने।

चोरी चोरी फिल्म से आपने गाना सुना, लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में। बरसात का जिक्र हो और हिंदी फिल्म संगीत की बात ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। कभी भीगी सड़कों पर प्रेम ने दस्तक दी थी, तो कभी सावन की फुहारों ने बिछड़ने की टीस को सुरू में ढाल दिया था। 50 और 60 के दशक में रचे गए बरसाती नगमे आज भी उतने ही ताजा लगते हैं, मानो हर बारिश के साथ फिर से जन्म ले लेते हों।

बरसात की रात फिल्म से आपने ये गाना सुना। इसे गाया मोहम्मद रफ़ी ने, इसको लिखा साहिर ने और संगीत दिया रोशन ने। कुछ बारिशें सिर्फ मौसम नहीं बदलती, बल्कि जिंदगी भर के लिए याद बन जाती हैं। कभी भीगी हुई राहें, कभी ठंडी हवाएं, तो कभी किसी अपने का साथ। बरसात अनगिनत लम्हों को हमेशा के लिए दिल में बसा देती है।

कश्मीर की कली फिल्म का गाना आपने सुना रफी और आशा की आवाज में। एस एच बिहारी ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। जब दिल में मोहब्बत की पहली दस्तक सुनाई देती है तो हर बादल दीवाना लगता है, हर फिजा गुनगुनाने लगती है।

नौजवान फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। वक्त हुआ है 1:56 और ठीक 42 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में सुनिए समाचार। ठीक आप 2 बजे सुनेंगे समाचार और 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। इस दौरान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में मेलबर्न में आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। उन्होंने कहा कि वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। श्री मोदी ने ये भी कहा कि यात्रा के दौरान उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करने हेतु शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों की उनकी उपज को उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 56 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ। रात सुरमई हो तो हर एहसास जैसे और भी गहरा हो जाता है। चांदनी की हल्की हल्की रोशनी, ठंडी हवा के झोंके और दूर कहीं बजते पुराने गीत, ये सब मिलकर मन को एक अलग ही सुकून दे जाते हैं।

कुछ गीत समय के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि हर बार सुनने पर नए लगते हैं। ये भी एक ऐसा ही सदाबहार नगमा है, जिसमें प्रेम की मासूमियत, साथ निभाने का विश्वास और जीवन के सफर की मधुर लय सुनाई देती है। गाइड फिल्म का गाना अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने।

गैम्बलर फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। इसे लिखा कवि नीरज ने और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। प्रेम की तड़प, समर्पण और इंतजार की गहरी भावना झलकती है इस गीत में। ये एहसास दिलाता है कि जब कोई अपने प्रिय के बिना अधूरा महसूस करता है तो उसका मन उसी के स्नेह और साथ की प्यास से भरा रहता है।

अभिनेत्री फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: वक्त हुआ है 2:28 और ठीक 26 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: कैसे कहें हम प्यार ने हमको

0: किस्मत हमसे खुद से हम।
1: शर्मीली फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। इसे लिखा कवि नीरज ने और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। प्रेम कभी मुस्कान देता है, कभी इंतजार, कभी सपनों को रंग देता है तो कभी यादों की हल्की सी कसक छोड़ जाता है। ये एहसास इंसान को बदल भी देता है और सवार भी देता है। शायद इसलिए कहा गया है कि प्यार अपने रास्ते खुद चुनता है और अपनी ही तरह जीवन को नए रंग दिखाता है।

तेरे मेरे सपने फिल्म से आपने गाना सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। कवि नीरज ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। जिंदगी की सबसे खूबसूरत खुशियां अक्सर बिना दस्तक दिए चली आती हैं। जब प्रेम अपने साथ नए सपने, नई उम्मीदें और नई किलकारियां लेकर आता है, तो सचमुच लगता है जैसे जीवन की बगिया महक उठी है।

अभिमान फिल्म का गाना आपने सुना, रफ़ी और लता की आवाज़ में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया एस डी बर्मन ने।

वक्त हुआ है 2:43 और ठीक 49 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुरमई रात की खामोशी में जब कोई धुन गुनगुनाती है, हर भूली बिसरी याद मुस्कुराते हुए लौट आती है।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू। आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ।

अमर प्रेम फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। हर बीतता पल उम्मीद को थोड़ा और गहरा कर देता है और हर आहट पर दिल यही सोचता है कि शायद अब वो आ जाए। रहना बीती जाए, शाम ना आए, ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि उस बेचैनी और विरह का स्वर है जो प्रेम में इंतजार करने वाला हर दिल कभी न कभी महसूस करता है।

सफर फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। वक्त हुआ है 2:55 और ठीक 5 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही फिरोज आलम के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनेल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। इस दौरान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में मेलबर्न में आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। उन्होंने कहा कि वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करने हेतु शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अगरतला में त्रिपुरा व्यापार सम्मेलन 2026 में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंधिया पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश, संपर्क, रसद और औद्योगिक विकास को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं और भविष्य की कार्ययोजना की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को उजागर करना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा है कि सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक निवेश, व्यापार और उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा स्थानीय उद्योगों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों से जोड़ना है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। पाकिस्तान के कराची तट से 12 घंटे पहले

ले लापता हुए बोइंग कार्गो विमान का मलबा गहरे समुद्र में पाकिस्तानी बचाव दल को मिल गया है। विमान में सवार 5 चालक दल के सदस्यों की तलाश जारी है। पाकिस्तान हवाई अड्डा प्राधिकरण ने बताया कि K2 एयरवेज के कार्गो बोइंग 737 विमान का मलबा ओरमारा बंदरगाह से 53 समुद्री मील दक्षिण में बरामद किया गया। फ्लाइट ट्रैकिंग सेवा के अनुसार विमान कराची के दक्षिण पश्चिम में समुद्र में कई बार ऊंचाई में अचानक बदलाव के बाद तेजी से नीचे उतरने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अलशारा को पत्र लिखकर बताया है कि उन्होंने सीरिया को आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों की अमेरिकी सूची से हटाने का फैसला किया है। ट्रंप ने कहा कि इससे सीरिया की पुनर्निर्माण का रास्ता खुलेगा और अमेरिकी कंपनियां वहां निवेश के लिए तैयार है। इस फैसले को लागू होने से पहले अमरीकी कांग्रेस 45 दिनों तक इसकी समीक्षा करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 3:11 और 13 सेकंड। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। दोस्तों, रात के इस तन्हाई में हम और आप मिलकर चलेंगे एक बेहद खूबसूरत सफर पर, प्यार मोहब्बत के उन गुजरे दौर के उन दिनों को हम याद करेंगे, सुनहरे दौर के उन नगमों को लेकर हम आपके खिदमत में हाजिर हैं। ये वो दौर है जहाँ पर इमोशन भी है, मोहब्बत भी है, तकरार भी है और कुछ अनोखी कहानियाँ भी हैं। तो गोल्डन एरा के उन रोमांटिक और सदाबहार बेहद खूबसूरत गीतों के साथ हम हाजिर हैं और आज के इस सफर का आगाज करेंगे मौसम की नज़ाकत को देखते हुए ऐसे ही एक बेहद खूबसूरत नगमे के साथ। और वो नगमा है 1959 में आई फिल्म दिल देखे देखो से। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले जी की। इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत है उषा खन्ना का।

अच्छा जी, और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ों में ये नगमा था फिल्म मेरे सनम से, और यह फिल्म आई थी 1965 में। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर महफिल से जी है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की, और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल में हम और आप मिलकर चल रहे हैं एक बेहद खूबसूरत सुनहरे दौर के नगमों के इस सफ़र पर, और मैं हूँ आपका हमराही फिरोज। तो आइए सफ़र को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं एक और बेहद खूबसूरत नगमे के साथ। एक बार फिर से मोहम्मद रफ़ी साहब, लेकिन इस बार उनके साथ हैं लता जी। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है रोशन साहब ने, और ये नगमा है 1963 की एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म ताजमहल से। एम सादिक के निर्देशन में बनी इस फिल्म में बेहद खूबसूरत अभिनय किया था इन तमाम कलाकारों ने। प्रदीप कुमार, मुमताज, जहांगीर के रूप में रहमान, जीवन, वीना नूरजहां, जबीन और अन्य कलाकारों ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था। तो आइए इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपको सुनाते हैं रफ़ी साहब और लता जी।

की आवाज में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर साहिर लुधियानवी साहब ने लिखा है और रोशन साहब का संगीत है। जो वादा किया है निभाना तो पड़ेगा। आपने भी प्यार और मोहब्बत में इस तरह के वादे जरूर किए होंगे।

एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 3:33 और 20 सेकेंड और यह महफिल है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की। और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं, यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब एक बार फिर से। दोस्तों, कभी आपने ऐसा सोचा है

या कभी ऐसा हुआ है कि आप जहां भी जाएं, किसी की याद, किसी की शरारत या किसी का ख्याल आपका पीछा ही ना छोड़े? बस इसी खूबसूरत एहसास को बड़े ही दिलकश अंदाज में पेश करता है हमारा अगला यह नगमा, और यह नगमा है बहुत ही खूबसूरत फिल्म जो 1963 में आई थी, चोरी चोरी। फिल्म चोरी चोरी का ये मशहूर नगमा है जहां मैं जाती हूं, उसके बोल लिखे हैं मशहूर गीतकार शैलेंद्र साहब ने, और जिनके अल्फाज सीधे दिल में उतर जाते हैं, और जब इन अल्फाज को अपनी जादुई आवाज़ों से सजाए लता जी और मन्ना डे साहब, तो हर सुर एक नई मुस्कुराहट बिखेर देता है। तो आइए इसी बेहद खूबसूरत नगमे के साथ हम आगे बढ़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और इसको संगीत से सजाया है हम सबके प्यारे शंकर जयकिशन साहब ने।

लता जी और मन्ना डे साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में यह नगमा था फिल्म चोरी चोरी से। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल में। दोस्तों कहते हैं जिंदगी का असली रंग तब और भी खूबसूरत हो जाता है जब हर आवाज़ एक दूसरे का साथ दे और हर दिल एक ही धड़कन पर धड़कता हुआ महसूस हो। हमारा अगला भी गीत कुछ ऐसा ही एहसास लेकर आता है, मेल मिलाप, अपनापन और एकता का पैगाम। फिल्म जिस देश में गंगा बहती है, 1960 में आई इस फिल्म का ये यादगार गीत है

इस फिल्म का ये यादगार गीत है। इस नगमे की सबसे बड़ी खासियत है इसकी शानदार गायकी, इसमें अपनी आवाज़ों का जादू बिखेरा है लता जी, गीता दत्त, मुकेश, मन्ना डे और महेंद्र कपूर साहब ने। जब इतने सुर एक साथ गूंजते हैं तो गीत सिर्फ सुना नहीं जाता बल्कि दिलों को जोड़ने वाला एक खूबसूरत एहसास बन जाता है। तो आइए आपकी खिदमत में पेश करते हैं इसी बेहद खूबसूरत नगमे को, फिल्म जिस देश में गंगा बहती है से, और यह फिल्म आई थी 1960 में। इस फिल्म के निर्देशक थे राधु कर्माकर और राज कपूर साहब, पद्मनी, प्राण, चंचल, ललिता पवार, राज मेहरा, रामायण तिवारी, नाना पालेसकर वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था। इस फिल्म के गीतों को लिखा था शैलेंद्र साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा था शंकर जयकिशन साहब ने। तो आइए उसी नगमे के साथ हम आगे बढ़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

ये लगभग था फिल्म जिस देश में गंगा बहती है से। आवाजें थी लता जी, गीता दत्त, मुकेश, मन्ना डे साहब, महेंद्र कपूर वगैरह। और ये फिल्म आई थी 1960 में, और इस गीत को लिखा था शैलेंद्र साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा था शंकर जयकिशन साहब की जोड़ी ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमराही की इस दिलकश महफिल में, और आज मैं हूं आपका हमराही फिरोज। दोस्तों कहते हैं कि मोहब्बत की दुनिया में कुछ इजहार शब्दों से नहीं बल्कि नजरों से होते हैं और कुछ सुरों से होते हैं। जब दिल अपने जज्बात बयान करता है तो हर धुन एक नई दास्तान बन जाती है।

ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा आज की इस महफिल में हम आपके लिए लेकर आए हैं, फिल्म आई मिलन की बेला से। ये फिल्म आई थी 1964 में और उसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा है। उसके दिल को छू लेने वाले बोल लिखे हैं शैलेंद्र साहब ने और इसकी मनमोहक धुन तैयार की है संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन साहब की। इस गीत को अपनी जादुई आवाजों से अमर बना दिया है मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी ने। दोनों की बहुत ही मधुर जुगलबंदी इस गीत को सुनने वालों के दिल में हमेशा के लिए बस जगह बना देती है। तो आइए इस सफ़र को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत ये नगमा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: सनम जिंदगी का बहाना।
1: ओ सनम तेरे हो गए हम। फिल्म आई मिलन की बेला का यह नगमा था रफी साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गोल्डन एरा के उन रोमांटिक और बेहद खूबसूरत युगल गीतों के साथ हम हाजिर हैं। जो क्लासिक नगमे हैं वो आपकी खिदमत में हम आपके लिए लेकर आए हैं। और दोस्तों कहते हैं कि मोहब्बत की सबसे दिलचस्प बात शायद यही है कि कभी कभी दिल की बातें अल्फाज से नहीं बल्कि सिर्फ एक मुस्कान, एक नज़र और एक कुछ खामोश इशारों से समझ में आ जाती है। हमारा अगला जो नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं वो भी कुछ ऐसा ही प्यार की खूबसूरती को बयान करता है और ये नगमा है

फिल्म कश्मीर की कली से। यह फिल्म आई थी 1964 में और इस गीत को लिखा है एस एच बिहारी ने और अपनी यादगार धुनों से सजाया है ओ पी नैयर साहब ने। इस गीत में अपनी मधुर और दिलनशी आवाजों का जादू भी कह रहा है आशा भोसले जी और मोहम्मद रफ़ी साहब ने। तो इन दोनों की बेहद खूबसूरत आवाज़ें आपके खिदमत में आकाशवाणी दिल्ली के एफ एम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमराही की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में आपके लिए।

अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं आपके साथ रहूंगा ठीक 4:10 पर, लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। इस दौरान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में मेलबर्न में आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। उन्होंने कहा कि वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, साथ ही वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज उड़ीसा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करने हेतु शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अगरतला में त्रिपुरा व्यापार सम्मेलन 2026 में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंधिया पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश, संपर्क, रसद और औद्योगिक विकास को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं और भविष्य की कार्य योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक निवेश, व्यापार और उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा स्थानीय उद्योगों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों से जोड़ना है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। अमरीकी सेना ने कहा है कि वे ईरान पर फिर से हवाई हमले कर रही है। यह हमले एक दिन पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी हमलों से युद्धविराम समाप्त हो गया है और अमरीका जरूरत पड़ने पर और कार्रवाई करेगा। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा तनाव से बड़े युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। इस बीच ईरानी मीडिया ने देश के दक्षिणी तटीय

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 4:11 और 5 सेकंड और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा का और अरुणिमा के इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी हर दिन हमें कुछ नया सिखाती है, कभी खुशियों की धूप मिलती है तो कभी मुश्किलों की छांव, लेकिन हर अनुभव हर तजर्बा हमारे सफ़र को और भी खूबसूरत बना देता है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि ज़िंदगी को सिर्फ समझना नहीं बल्कि जीना भी ज़रूरी है और ज़िंदगी को जीने के लिए सब कुछ सकारात्मक होना बहुत ही अहम है। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसी नगमे से आज के सफ़र का आगाज़ करेंगे आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और यह नगमा है फिल्म जागते रहो से। फिल्म जागते रहो का ये यादगार नगमा जिसे लिखा है शैलेंद्र ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है सलील चौधरी ने। आवाज़ें मुकेश साहब की और ये ऐसी आवाज़ है जो दिल को सुकून देने वाली है और हमेशा आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करने वाली ये आवाज़ है। ये गीत हमें याद दिलाता है कि हिंदी सिनेमा में ये गीत बहुत ही मशहूर हुआ था। ये गीत हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी में हर लम्हा हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इसलिए छोटी छोटी खुशियों की कदर कीजिए, अपनों के साथ बिताए वक्त को सजोएं और हर नए दिन का इस्तकबाल मुस्कुरा कर कीजिए, यही तो ज़िंदगी की असली खूबसूरती है।

0: सच है क्या सब सच।
1: जी हाँ, जिंदगी ख्वाब है और ख्वाब में झूठ क्या सच क्या। जिंदगी बेहद खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है और इस जिंदगी को हमेशा हंसकर गुजारना हम सब की जिम्मेदारी है। और जब कोई ख़ास आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो फिर ये ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है। कहते हैं कि ज़िंदगी की भाग दौड़ में हम अक्सर बड़ी बड़ी खुशियों की तलाश करते रहते हैं, जबकि सुकून तो कई बार छोटे छोटे लम्हों में छिपा होता है। किसी अपने का साथ, भरोसे का एहसास और दिल से निकली एक मुस्कान, यही पल जिंदगी को खूबसूरत बना देते हैं। इसी प्यार जज्बे को अपने सुरों में समेटे हुए हैं ये बेहद खूबसूरत नगमा फिल्म वक्त से। आवाजें हैं आशा जी और महेंद्र कपूर साहब की।

हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। वक्त फिल्म का ये नगमा आशा जी और महेंद्र कपूर साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और ये महफिल है आपकी अपनी पसंदीदा अरुणिमा की। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी भी कितनी दिलचस्प है ना, कभी सीधी राह पर चलाती है तो कभी किसी मोड़ पर नई सीख नई उम्मीद दे जाती है। नए लोग और नई उम्मीदों से मुलाकात करने पर हमें कुछ अलग ही अनुभव होता है, इसलिए हर मोड़ को मुस्कुरा कर अपनाइए, क्योंकि कौन सा लम्हा आपके जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन जाए कोई नहीं जानता। इन्हीं एहसासात को बेहद खूबसूरती से बयान करता है फिल्म मेरे हमसफर का ये बहुत ही खूबसूरत नगमा, और ये फिल्म आई थी 1970 में। इस नगमे को अपने बहुत ही मधुर आवाजों से सजाया है मुकेश और लता जी ने। इसके बेहद खूबसूरत बोल लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी भाई ने। तो आज के इस खूबसूरत सफर को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अगर आज की राह थोड़ी मुश्किल है तो मायूस बिल्कुल ना हो। हर सफर में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहां से नई मंजिलें दिखाई देती हैं, बस हौसला बनाए रखने की जरूरत है।

क्योंकि उम्मीद हमेशा आगे बढ़ने की वजह देती है। और जब ऐसा नगमा हो किसी राह में किसी मोड़ पर, हमें यूं न जाना छोड़कर, मेरे हम सफ़र मेरे हम सफ़र। बहुत ही खूबसूरत यह नगमा, जब इसको आप सुनेंगे, इसकी गहराई में जाएंगे, तो आपको उस दर्द का, उस प्यार का, उस मोहब्बत का एहसास होने लगेगा।

किसी राह में किसी मोड़ पर यूं ही चलने देना छोड़कर मेरे हम सफ़र मेरे हम सफ़र। लता जी की आवाज़ में और साथ ही थे मुकेश साहब, बेहद खूबसूरत ये नगमा फिल्म मेरे हम सफ़र से। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अरुणिमा की इस दिलकश महफिल में। ज़िंदगी एक ऐसा सफ़र है जहाँ हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है। कुछ लोग रास्ते में मिलते हैं, कुछ यादें हमेशा के लिए साथ रह जाती हैं और कुछ पल सिर्फ हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए आते हैं। इसलिए गुजरे हुए लम्हों पर अफसोस करने से ज़्यादा आज को खूबसूरत बनाना ज़रूरी है। इसी गहरे एहसास को अपने अल्फाज और सुरों में डालता है फिल्म आपकी कसम का ये बेहद खूबसूरत नगमा। ये फिल्म आई थी 1974 में। इस अमर नगमे को अपनी दिलकश आवाज से सजाया है किशोर कुमार साहब ने और इसे लिखा है आनंद बख्शी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है राहुल देव बर्मन साहब ने। दोस्तों, हमें हमेशा यह लगता है कि कोई तो हो हमारी जिंदगी में जो हमें आगे लेकर के जाए, यही उम्मीद होती है। जिंदगी में हर मुलाकात की कद्र कीजिए, हर रिश्ते को मोहब्बत से निभाइए और हर दिन का शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि वक्त आगे बढ़ता रहता है लेकिन अच्छे रिश्ते और प्यारी यादें उम्र भर दिल को रोशन करती रहती हैं। तो आइए ऐसे ही नगमे के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अरुणिमा की इस महफिल में। किशोर कुमार साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ में ये नगमा है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज़ आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा इस महफिल में जिसका नाम है अरुणिमा। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 4:40 और 32 सेकेंड। दोस्तों कहते हैं कि ज़िंदगी की खूबसूरती कई बार बड़ी चीज़ों में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे पलों में छिपी होती हैं जो दिल को सुकून दे जाते हैं और एक अलग एहसास जगा जाते हैं। किसी अपने की मुस्कान, किसी ख़ास इंसान का साथ और एक प्यारा सा एहसास, यही तो वो पल हैं जो आम वक्त को, आम दिनों को भी यादगार बना देते हैं। इसी खूबसूरत एहसास को बयान करता है अगला ये बेहद खूबसूरत कलाम। कहते हैं खुशियां हमेशा किसी बड़ी मंजिल के बाद नहीं मिलती, कभी कभी वो हमारे साथ चल रहे लोगों और उन अनमोल लम्हों में मिलती हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। रिश्तों की कदर कीजिए क्योंकि यही यादें जिंदगी को ख़ास और खूबसूरत बना देती है। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत गज़ल है, एक बेहद खूबसूरत ये गज़ल है जो है फिल्म साथ साथ से, और ये फिल्म आई थी 1982 में। आवाज़ें हैं हम सब के चाहे थे जनाब जगजीत सिंह साहब और चित्रा सिंह की। इस गज़ल को लिखा है जावेद अख्तर साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है कुलदीप सिंह ने। तो आइए इस सफ़र को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं और इस दिलकश एहसास का लुत्फ उठाते हैं।

तुमको देखा तो ये ख्याल आया। जगजीत सिंह साहब की बेहद खूबसूरत आवाजों में ये नगमा था। बल्कि ये एक गजल थी फिल्म साथ साथ से। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अरुणिमा के इस दिलकश महफिल में जिंदगी में कुछ इंतजार ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ कम नहीं होते, बल्कि हमें धैर्य, उम्मीद और रिश्तों की अहमियत सिखाते हैं। कभी किसी अपने की याद, कभी किसी सपने के पूरा होने की चाह, यही छोटे छोटे एहसासात हमारी जिंदगी को एक खूबसूरत कहानी बना देते हैं। इसी गहरे जज्बात को अपने मधुर धुन और दिल को छू लेने वाले अल्फाज में पेश करता है अगला ये बेहद खूबसूरत कलाम एतबार फिल्म से, और ये फिल्म आई थी 1985 में। एतबार फिल्म का ये बेहद खूबसूरत कलाम, बहुत ही प्यारी ये गजल। उम्मीद इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। कुछ मंजिलें देर से मिलती हैं, लेकिन जो लोग सब्र और हौसले के साथ आगे बढ़ते हैं, उनके लिए हर इंतज़ार एक नई उम्मीद बन जाती है, एक नई सीख बन जाती है। तो आइए इसी बेहद खूबसूरत गज़ल के साथ हम आगे बढ़ते हैं भूपेंद्र सिंह और आशा जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में, जिसे लिखा है हसन कमाल साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से इसको संवारा है, मौसीकी से संवारा है बप्पे लहरी साहब ने।

किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। भूपेंद्र और आशा जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में ये गजल थी फिल्म एतबार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपको कैसा लग रहा है हमारा ये प्रोग्राम, हमें ज़रूर बताइएगा अपने पैगामात के ज़रिए और अपने ईमेल के ज़रिए। उसके लिए हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com fmgoldairdaily@gmail.com। दोस्तों, कहते हैं ज़िंदगी की खूबसूरती सिर्फ अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने में नहीं बल्कि अपने पसंद, उनकी ख्वाहिशों और उनके एहसासात की कद्र करने में है जिसे आप चाहते हैं, जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। जब रिश्तों में समझ, सम्मान और अपनापन होता है तो साधारण पल भी बेहद ख़ास बन जाता है। ऐसा ही एक बहुत ही खूबसूरत नगमा है फिल्म सफ़र का। आवाज़ है मुकेश साहब की और इसे लिखा है इंदीवर साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी भाई ने।

फिल्म सफर के इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत। अरुणिमा से आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं आपके साथ रहूंगा लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। इस दौरान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में मेलबर्न में आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज उड़ीसा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करने के लिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन उड़ीसा दीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुदरा के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अगरतला में त्रिपुरा व्यापार सम्मेलन 2026 में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंधिया पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश, संपर्क, रसद और औद्योगिक विकास को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं और भविष्य की कार्य योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को उजागर करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है और शेष कार्य तेजी से चल रहा है। राजस्थान के कोटा में श्री गडकरी ने एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अगले 2 वर्षों में दिल्ली से मुंबई के नरीमन प्वाइंट और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तक की यात्रा केवल 12 घंटे में पूरी की जा सकेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। नई दिल्ली में 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत राज्य में 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा की खरीद की जाएगी, जिसमें 87,000 मीट्रिक टन मिलिंग खोपरा और 226 मीट्रिक टन बाल खोपरा शामिल है। खोपरा की पूरी खरीद मूल्य समर्थन योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर की जाएगी। स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य 1,000 करोड़ रूपये से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने CSIR UGC NET जून 2026 परीक्षा के लिए अग्रिम शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.csirnet.nta.nic.in से अपनी पर्ची डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। अमरीकी सेना ने कहा है कि वह ईरान पर फिर से हवाई हमले कर रही है। ये हमले एक दिन पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरानी हमलों से युद्ध विराम समाप्त हो गया है और अमरीका जरूरत पड़ने पर और कार्रवाई करेगा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की अंडर 23 महिला मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 पदक पक्के कर लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 5:11 और 8 सेकेंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी का। और भोर सुहानी की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फिरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब। और दोस्तों कहते हैं कि रात कितनी भी गहरी हो सवेरा ज़रूर आता है, मुश्किलों के बाद ही इंसान को नया रास्ता नज़र आता है, क्योंकि जब आप मुश्किल हालात में होते हैं तभी आप सबसे बड़े विद्वान साबित होते हैं, जब आप उन मुश्किल हालात को बड़े ही खूबसूरती से अपनी मेहनत अपनी लगन और अपनी चतुराई से उससे बाहर निकालते हैं। आप ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, मंजिल पाने में बहुत सारी कठिनाइयां रास्ते में आती है, लेकिन उसका डटकर जो मुकाबला करता है वही सच्चा योद्धा होता है। और दोस्तों हर सुबह हर दिन हम इस नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि आने वाला दिन हमारा अच्छा हो, आने वाला वक्त हमारे लिए बेहतर हो। इसी उम्मीद के साथ हम ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं हर दिन हर नई सूरज की रोशनी के साथ। और हर दिन का आगाज़ हम उस खुदा के नाम से उस ईश्वर के नाम से करते हैं जो सर्वशक्तिमान है, वही सब कुछ करने वाला है, वही हमें देने वाला है, वही हमें जिताने वाला है, वही हमें आगे बढ़ाने वाला है। इसलिए हम जो भी काम करते हैं उस ईश्वर उस खुदा उस गॉड के नाम से करते हैं जो सर्वशक्तिमान है, और उन्हीं से दुआ करते हैं कि हमारी मुश्किलों को आसान कर दे और हमें तमाम परेशानियों से बाहर निकाल दे। ऐसा ही एक बहुत ही खूबसूरत नगमा है फिल्म पैगाम का, मोहम्मद रफ़ी साहब की दिलकश आवाज़ में। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इसी नगमे के साथ हम आगे बढ़ेंगे भोर सुहानी की इस दिलकश महफिल में।

मुश्किलें आसान कर दे ऐ खुदा। जी हाँ, जिंदगी का सफर हमेशा आसान नहीं होता, कभी रास्तों में मुश्किलें आती हैं तो कभी हालात हमारे हौसले को परखते हैं, लेकिन यही चुनौतियां हमें मजबूत बनाती है और आगे बढ़ने का जज्बा देती है। इसीलिए हम

हर सुबह कोई भी काम करते हैं तो उस खुदा के नाम से, उस ईश्वर के नाम से शुरू करते हैं। हर दिन का आगाज़ हम ऐसे ही करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, समय बहुत ही बलवान होता है। समय, वक्त एक ऐसा आईना है जिसमें हमारी ज़िंदगी के हर पल की तस्वीर दिखाई देती है। कुछ लम्हे हमें मुस्कुराहट देते हैं, कुछ हमें सीख देते हैं और कुछ हमें पहले से बेहतर इंसान बना जाते हैं। इसलिए गुजरे हुए कल का अफसोस करने के बजाय आज को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी खूबसूरत सोच के साथ हम भी आगे बढ़ेंगे एक और बहुत ही खूबसूरत नगमे के साथ। आवाजें हैं आशा भोसले जी और सुरेश वाडेकर की। कहते हैं, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो इंसान हर अनुभव से सीखता है वो हर दिन अपनी ज़िंदगी को और खूबसूरत बना सकता है। बीते हुए पल यादों का हिस्सा है, लेकिन आने वाले पल हमारी उम्मीद की कहानी लिख सकते हैं। तो आइए आप भी महसूस कीजिए इस पल को और इस ज़िंदगी के बेहद खूबसूरत सफ़र को आगे बढ़ाइए भोर सुहानी के साथ।

दोस्तों कहते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ अपने लिए जीने का नाम नहीं बल्कि दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने का भी नाम है। जब हमारी छोटी सी कोशिश किसी के जीवन में खुशी भर देती है तो वही पल हमारी ज़िंदगी को और भी ख़ास बना देता है। कहते हैं इंसान की असली पहचान उसके पास मौजूद चीज़ों से नहीं बल्कि उसके दिल की नेकी और उसके व्यवहार से होती है। प्यार, मदद और अपनापन बांटने से जिंदगी में एक अलग ही सुकून मिलता है। जिंदगी का असली आनंद तब मिलता है जब हमारी खुशियों में दूसरों की मुस्कान भी शामिल हो। अपने सपनों को पूरा कीजिए लेकिन साथ ही अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्यार और खुशियों की वजह बनिए। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा है बादल फिल्म का, अपने लिए जिए तो क्या जिए। मन्ना डे साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर भोर सुहानी की इस दिलकश महफिल में आपके लिए।